0: Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
1: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
3: Oh, Julelal Kalandar, mast, mast, dam, mast.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
1: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
4: Abira, yahan se mera rasta bahut mushkil hone wala hai. Kya tum mere saath?
5: Jahan tum ban pa.
4: Ye faisla mera tha. Bhukat tum rahi ho. Main kuch nahi kar pa raha hu, kuch nahi kar pa raha hu.
5: अगर हम साथ हैं
4: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
0: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर.
6: ये रिश्ता क्या कहलाता है. मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803EE392 एंड यप टीवी. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स.
7: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0116 471 0697 या ईमेल करें sales@leicamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner. Like our radio.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाए जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच मल भखाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई वलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

कर कर वेखै सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनात, जुग जुग एको वेस, एक दूजी बोलख होवें, लख होवें लखवीस, लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई।

सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छुट्टी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394।
4: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डूज गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
0: Laika Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at laikaradio.com and the Laika Radio mobile app.
4: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 years of experience, 40,000 passengers every year. Star Tours is trusted for a reason by travelers who appreciate familiar comforts. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why don't I need to take my...
3: Hey, boy!
4: Coast Guard, we're stuck.
5: Okay, help's on its way.
4: Hold on, mate.
6: Shoes, tide, phone.
7: Back before dark, love. Okay.
8: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
9: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call, dial 999.
10: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
11: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
12: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
13: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा.
14: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
15: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.

0: Disha Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
2: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
3: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
2: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
3: दिल तो टूट भी गया,
2: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
4: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
2: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
5: Punjab, the biggest tunes.

0: Special Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: दिस ईद उल अज़हा शेयर द जॉय नो मैटर द डिस्टेंस, वेदर यू आर नियर और फार, सेंडिंग सपोर्ट इज जस्ट अ टैप अवे। सेंड मनी विद वेस्टर्न यूनियन, एंजॉय जीरो ट्रांसफर फीस ऑन योर फर्स्ट ऑनलाइन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स और मोबाइल वॉलेट्स। प्रेफर टू सेंड मनी इन पर्सन। Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations.

0: क्या मीठा गाना था लता जी के आवाज में फिल्म हीर रांझा से। और ये गाना जब फिल्म आई थी तब हिट हुआ होगा, लेकिन आज तक सुपर डुपर हिट है और इस तरह के गाने कभी पुराने हो ही नहीं सकते। और उससे पहले आपने आर डी बर्मन की आवाज में शोले फिल्म का गीत सुना। और लीजिए दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, या कहूँ ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। तो जहां कहीं भी हमारे साथी साथ दे रहे हैं, सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो इस हफ्ते में थर्सडे फ्राइडे भी आपके साथ थी, लेकिन वीकेंड पर आने का कुछ अलग ही बात है। मेरे पूरे लिसनर्स जो हमेशा सालों से मुझे वीकेंड पर सुन रहे हैं, वो सब मेरा साथ देने के लिए आ चुके हैं और सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आपको बताते चले कि मैं हूँ ऋतु शर्मा और ये है आपका मनपसंद लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और जहाँ भी साथी सुन रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं तो बस साथ देते रहिए। जैसे दो गाने मैंने बजाए ऐसे ही गाने एक बजे तक सुनवाती रहूंगी, क्योंकि आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं एक नहीं दो नहीं ढेर सारे क्लासिक्स। यस
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भाई भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो वो आप वही हमेशा की तरह SBI बैंक के थ्रू, ब्रांच के थ्रू, योनो ऐप के थ्रू ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आज 1 pound के बदले में आपको 127.3 भारतीय रुपए मिलेंगे। लेकिन उसके अलावा आपको हम फिर से बता दें कि एंड ऑफ जून तक आप विन कर सकते हैं 75 pound का वाउचर एवरी डे जब आप मनी भिजवाते हैं 1000 pound एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Like a radio.
3: Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो Falcon Cash and Carry. Mustafa Basmati XXL Rice 40 LBS सिर्फ $24.99.
3: Hamza Samosas 3 for 10.
4: Top Star Fried Onions only 99p.
3: Suhana Masalas 2 for 150. Ramdev Namkeen 2 for 149.
4: Hira Gram Flour 179. Heinz Ketchup 279.
3: Kesar Mango Pearl 149. Full Makana 245. Falcon Cash and Carry.
4: 82 Assistant Street LE12JU. Yeah, Rolex Hill LE54UN.
3: While stocks last.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: 105 શોઝ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
10: જેઝ એન્ટરટેનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
9: લીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 2:30 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk सकना रह जो हस्बैंड जी।
11: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जैमिन फूड्स।
12: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्ट दी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
11: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जैमिन फूड्स।
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 02037737333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
14: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
15: Leica Radio.
16: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
14: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: म्यूजिक है ये लास्ट वाला, मैं लिटरली इसके साथ गा रही थी और मुझे ये गाना बहुत मजेदार लगता है। एस पी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाजों में, अंदाज अपना अपना फिल्म का था ये गाना, जिसमें तुषार भाटिया और विजू शाह का म्यूजिक था। और बस यही कहूंगी कि आई लव दिस ट्रैक, और ये गाना मेरी ओर से आप सभी के लिए था जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे और ढेर सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचाए। तो चलिए एक नजर डाल ली जाए।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आप सब लाइका रेडियो नेटवर्क सुन रहे हैं, जहां पर ये है लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मेरा नाम है रितु शर्मा। एक बजे तक यहीं आपके मैं साथ रहूंगी, और हमारे साथियों ने बहुत सारे मैसेजेस भिजवाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे बहुत प्यारे लिसनर गुरविजय जी आपके मैसेज के साथ, और आपने आज भी आज का विचार भिजवाया है, और इसमें बहुत ही पते की बात है, ध्यान से सुनिए। लिखा है, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने से पहले एक बार कोशिश करना सीखो, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो, और सबसे पते की बात, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो, क्योंकि ये जो खूबसूरत जीवन है ना, एक ही बार मिलता है, जी भर के जिए, जब तक जीवित है जब तक है, मरने के बाद सब कुछ खत्म, आंख मुदी सब कुछ खत्म। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हमारे साथ शेयर किया है विजय जी, स्वागत है आपका इस शो में। और हमारे साथ है हमारे हरीश खत्री जी, गुड मॉर्निंग। दिव्या जी गुड मॉर्निंग, संध्या जी, विनोद जी नॉर्थ होल से, प्रकाश जी, प्रदीप सोलंकी जी ब्रैकनेल से, कैंट से, सलमा जी स्लाव से, सुरजीत जी, निर्मला जी, सहर जी हमारे साथ है, राजेश जी थैंक यू, आपने लिखा है आपको धूप से भरी शनिवार की सुबह की बहुत बहुत बधाइयां, आई लव इट, थैंक यू। और आपने भी लिखा है कि हर सूर्योदय एक नया मौका लेकर आता है हमारे पास, हर दिन नई शुरुआत करने और सही फैसले लेने का मौका होता है, बस ईश्वर करे हमें इतनी शक्ति दे कि हम हर समय सही मौके को अच्छी तरह से यूज कर पाए। थैंक यू साथ देने के लिए, थैंक यू अर्जुन जी, जयंत एंड मीना जी, मोहम्मद अयूब चौहान सुन रहे हैं हमें, वियाना में अनिल जी है, मृदु जी, तोची जी में से शेख, और जितने भी साथी हमेशा की तरह घर में, गाड़ी में, बाहर, गार्डन में, किचन में, काम पर, शॉप पर, जहां भी है, सभी का स्वागत है। और ये गाना एक बार फिर से मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: जी हाँ, कल्याण जी आनंद जी की धुन और उस पर अमिताभ बच्चन की आवाज गाने में लगाती है चार चांद। और ये गाना मैं कहूंगी तब भी बहुत पॉपुलर हुआ था और आज भी देखिए क्या कमाल का लगता है। और मैं सोच रही थी कि इस गाने को किसने लिखा होगा, क्या सोचकर लिखा होगा। और जब मैंने पता किया तो अनजान या प्रकाश मेहरा जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन दोनों में से किसी ने ये गाना लिखा है। लेकिन जिसने भी लिखा है कमाल का लिखा है। और देखिए, अगर राजेश रोशन उस दिन अमिताभ बच्चन को इंसिस्ट नहीं करते मिस्टर नटवरलाल फिल्म का गीत गाने के लिए, तो क्या अमिताभ बच्चन इस गाने को गा पाते इतना कॉन्फिडेंटली? जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। और ये गाना आप सबने पसंद किया है, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, थैंक यू फरजाना साथ देने के लिए, थैंक यू प्रज्ञा कहती है हमारे घर में आपका स्वागत है, तो हमारे भी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मिसेस चियांग बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर नरेंद्र पाठक स्वागत है आपका। एंड ऑफकोर्स हमारी अरुणा जी हमारे साथ है, तो आप सभी हमारे साथ हैं तो बस साथ देते रहिए, क्योंकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होती हैं यादें। और आज की यादें मैं बात करने वाली हूँ उनकी, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्म्स बनाई हैं, जिनके गाने आपको पसंद हैं और जिन्होंने एक मिस्ट्री थ्रिलर्स बनाई हैं। और नाम बता देती हूँ, उनका नाम है राज खोसला। आज राज खोसला को याद करूँगी यादें में प्रोग्राम के अगले हिस्से में।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
0: तो अगला गीत सुनाने से पहले हम आपको याद दिलाते चलें कि भाई हमने आपको पहले भी बताया था कि डेन्यू प्रॉपर्टीज जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है हैरो में, अब उनका नया ऑफिस खुल रहा है नाइट ब्रिज में और आज सैटरडे को उसकी ओपनिंग है। और आज हमारी लाइका टीम वहां पहुंचने वाली है और वहां से लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली है। 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये सब काम होगा। आप भी चाहें तो जा सकते हैं अगर आप दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हैं या फिर कुछ आपके जहन में क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप वहां पहुंच जाइए, आप वहां उनसे बात कर सकते हैं। और ये जो है हम आपकी

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like Radio Network, proud hospitality partner,
2: Ragasan. ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
4: खुद से भी ज्यादा.
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
4: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
2: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, VT 394.
5: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
6: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
7: Okay, help's on its way.
8: Grab my hand!
9: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
10: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
11: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
12: 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
13: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: लीजिए लता जी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में चलते चलते फिल्म से था ये गाना जो 1976 में आई थी और बप्पी लहरी का म्यूजिक था। मिस्टर नरेंद्र पाठक ये गाना आपको पसंद है, आपको डेडिकेट करते हैं ये गाना। और इसके अलावा हमारी एक और प्रज्ञा है, आपका नंबर एंडिंग है 570, आप अपना नाम पूरा बताइए क्योंकि हमारी एक और प्रज्ञा है। तो मैं दो प्रज्ञा मतलब किस तरह से बोलूं तो आपके सरनेम हो जाएगा, तो मैं आपको आपके सरनेम से बोल सकती हूं कि ये प्रज्ञा ये है, ये प्रज्ञा ये है। तो मुझे अपना सरनेम जरूर लिखकर भेजिए। स्वागत है आपका इस शो में। और इसके अलावा हमारे साथ है कौन जिन्होंने नाम लिखा है, परेश व्यास जी स्वागत है आपका। श्वेता जैन का आज ड्राइविंग टेस्ट है और योगेंद्र जैन चाहते हैं कि मैं उनको शुभकामनाएं बोल दूं। भाई मैं बिल्कुल शुभकामनाएं बोलूंगी और मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल पास ही हो जाइए क्योंकि ये ड्राइविंग टेस्ट मैंने देखा है बहुत बड़ा हेडेक होता है और कई लोगों ने न जाने कितने अटेम्प्ट में टेस्ट पास किए। वैसे मैंने तो पहली बार में पास किया था, मैं सच बता दूं और बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जिन्होंने 17 टाइम्स टेस्ट दिया है और उसके बाद भी वो पास नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे आप एक बार फेल हो जाते हैं ना तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लूज हो ही जाता है। तो बस मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं चाहती हूं कि आप बिल्कुल जल्दी से पास हो जाइए श्वेता। और इसके बाद आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में होंगी यादें जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राज खोसला के बारे में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 127 पाउंड्स 127 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 165 बांग्लादेशी टकास।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Get your products advertised across the largest Asian radio network. We are LIKA Radio. Email sales at likamedia.co.uk. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 109.4 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio. Leica Radio. India Cricket Score Updates. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England Cricket.
0: तो भाई अब IPL अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। कल राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में मैच था जिसे गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से जीत लिया और कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच में है फाइनल मैच IPL का, जिसके बारे में हम आपसे जरूर बात करेंगे, हम आपको जरूर उसका अपडेट बताएंगे, आप हमारा साथ देते रहिए।
1: India cricket score updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
2: Ye hai Leica Radio. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.

0: लता जी के आवाज में था ये शानदार गाना, जिसे लिया था फिल्म अनीता से, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। और उससे पहले आपने दो चोर फिल्म का गीत सुना, जिसमें किशोर दा और आशा भोसले की आवाजें थी, और इस गाने को प्रोड्यूस किया था राज खोसला ने। तो आज हम राज खोसला के बारे में ही बातें करने जा रहे हैं, उन्हें यादें में याद करने जा रहे हैं। कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और कल भी उनके बारे में बात होगी, लेकिन फिलहाल तो आपको बता दूं कि राज खोसला हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही प्रभावशाली और सफल डायरेक्टर्स में से एक थे, और जिन्हें विशेष रूप से उनकी नवाबी शैली, थ्रिलर फिल्मों और बेहतरीन संगीत की नॉलेज के लिए जाना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राज खोसला बचपन से ही एक सिंगर बनना चाहते थे। जानते हैं वो ऑल इंडिया रेडियो में एक सिंगर के रूप में भर्ती होने के लिए मुंबई आए थे। जी हाँ, और जब वो मुंबई आए तो उनकी मुलाकात हुई उस जमाने के जाने माने डायरेक्टर, एक्टर, कोरियोग्राफर गुरुदत्त से, जिनके साथ उन्होंने एज ए असिस्टेंट अपने करियर की शुरुआत की थी। और गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनसे कहा कि ये सिंगिंग विंगिंग छोड़ के तुम डायरेक्शन में अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। और गुरुदत्त की नज़र पारखी थी, और देखिए राज खोसला ने क्या खूबसूरत फिल्म्स बनाई हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने से लेकर रंगीन जमानों का दौर आया, तब तक राज खोसला को एक स्टाइलिश डायरेक्टर माना जाता था। उनकी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, वो कौन थी, CID, मेरा साया, अनीता, और इन सब फिल्मों में सस्पेंस था। लेकिन उनके करियर की सबसे पहली जो फिल्म थी वो थी CID, और ये फिल्म कितनी सुपरहिट थी ये आप सब जानते हैं। उनके बारे में आज कुछ बातें और उनसे जुड़े कुछ किस्से मैं आपको सुनवाऊंगी, और साथ ही साथ डेन्यू प्रॉपर्टीज पर आज हमारे साथी हैं, पहुंचे हैं, तो उनसे भी आपकी बातें होंगी। लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो भिजवा सकते हैं SBI ब्रांच के थ्रू ऑनलाइन या फिर यूनो ऐप के थ्रू, और आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.3 भारतीय रुपए। और इसके अलावा आपको बता दें कि बिफोर एंड ऑफ जून आप 75 pound का वाउचर एवरीडे विन कर सकते हैं जब आप पैसा 1000 pound से ऊपर भिजवाते हैं। और इसके अलावा 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक when sending over 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99,
2: हमजा समोसास 3 for 10,
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
2: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
2: केसर मैंगो पल 149, फूल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN.
2: While stocks last,
4: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colorful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation, and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Leica Radio.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA. City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
11: High appreciation.
10: In Dubai.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
13: Yeah, like a gold.

0: डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म दो रास्ते से था ये गाना, और ये फिल्म कितनी बड़ी हिट हुई थी हम सब ये बात जानते हैं।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो राज खोसला के जीवन से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से कुछ किस्से मैंने आपके लिए सुनाने वाली हूँ, कुछ किस्से मैंने चूज किए हैं। ओहो, गले में क्या हो गया?

0: अब एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, एक गाने से जुड़ा हुआ, जो इन्हीं की फिल्म से लिया हुआ है और बहुत ही मशहूर गाना है। हम सब जानते हैं कि फिल्में उनकी कमाल की हैं और उनके गाने कमाल के हैं, तो ये किस्सा फिल्म मेरा साया से जुड़ा है। जब शूटिंग हो रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी झुमका गिरारे गाने की, इस गाने में मदन मोहन का संगीत है और आशा भोसले ने इस गाने को गाया है। और जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो राज खोसला चाहते थे कि इस गाने में बेहद खास और खूब सारी एनर्जी हो। रिकॉर्डिंग के समय राज खोसला हर अंतरे और हर अलाप में एक खास तरह का मस्ती भरा अंदाज चाहते थे और इसलिए वो बार बार आशा भोसले से रीटेक करवा रहे थे। मदन मोहन के लाख समझाने के बाद भी राज खोसला संतुष्ट नहीं हो रहे थे। बार बार रीटेक और राज खोसला की सख्ती से तंग आकर आशा भोसले इतनी परेशान हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अब वो ये गाना नहीं गाएंगी, किसी और से गवा लो। राज खोसला ने बड़े ही प्यार से उन्हें मनाया और उन्हें समझाया कि वो सिर्फ बेहतरीन नहीं बल्कि ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं। और आखिरकार उनकी मनपसंद से गाना रिकॉर्ड हुआ और जब गाना फाइनल हुआ तो आप जानते हैं कि इस गाने ने क्या कमाल किया। और आज भी भारत के जब सुपरहिट गानों का नाम आता है तो उसमें इस गाने का नाम भी जरूर आता है। अब इस गाने की इतनी बात की है तो चलिए हो जाइए गाना।
1: ये है लाइका रेडियो, टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोको नूडल्स।
2: झुमका गिरा रे

0: दर्द और संकोच में अपना एक हाथ कमर पर रख लिया और पैर को थोड़ा सा झटका दिया। और कोई आम डायरेक्टर होता तो कट बोल देता, लेकिन राज खोसला पारखी नजर वाले थे और उन्होंने जब साधना ये सब कर रही थी रिकॉर्डिंग चालू रखी और साधना से कहा कि तुमने अभी जो पैर मटकाकर हाथ कमर पर रखा है, अब देखना वही इस गाने का हुक स्टेप होगा। साधना जी हैरान थी, उन्हें लगा कि वो तो उन्होंने दर्द में किया था, लेकिन राज खोसला ने जब उन्हें म्यूजिक के साथ और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ वो उनका कमर का झटका, पैर का झटका दिखाया, तो साधना जी भी हैरान थी। और राज खोसला के कहने पर पैर में दर्द होने के बावजूद उन्होंने उसी अंदाज में बार बार उस स्टेप को किया। और देखिए, आज भी जब कोई झुमका गिरा रे गाता है या फिर उस पर नाचता है तो अनजाने ही उसका हाथ कमर पर चला जाता है और उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये साधना जी ने चोट में ऐसा किया था। ऐसे और भी बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको मैं बताती चलूं।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो राज खोसला की फिल्म से एक और गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले खुशखबरी है हमारे किशोर कुमार के फैंस के लिए। आपके लिए एक बार फिर से आ गया है क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट जिसमें केतन, इंद्राणी, संजय और द 515 बैंड परफॉर्म करने वाले हैं। और ये होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। टिकट्स अवेलेबल है eventbrite.co.uk पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं ऑन 0208-514-5400 पर। और इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं हम, यानी कि लाइका गोल्ड रेडियो।
2: दिस इज रितु शर्मा, दिस इज रितु शर्मा। Hey there, main hoon Bali Brahmbhatt. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, Ansuni Bate, Raag Adharit Gaane on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 p.m. to 4 p.m. Yep.

0: राज खोसला की फिल्म में देवानंद थे, 16 साल इस फिल्म का नाम था। और आपको बता दें कि राज खोसला और देवानंद की जो दोस्ती थी ना और उनका जो साथ था, वो हिंदी सिनेमा के सबसे सुनहरे पन्नों में से एक है। देवानंद ने ही राज खोसला को एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसे पहला बड़ा ब्रेक दिया था, और वो थी फिल्म CID। इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ। राज खोसला गुरुदत्त के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे और देवानंद और गुरुदत्त बहुत पक्के दोस्त थे और दोनों ने ही मिलकर नवकेतन फिल्म्स की शुरुआत की थी। देवानंद और गुरुदत्त ने संघर्ष के दिनों में एक वादा किया था एक दूसरे से कि जब गुरुदत्त डायरेक्टर बनेंगे तो देवानंद को हीरो लेंगे, और जब देवानंद प्रोड्यूसर बनेंगे तो वो गुरुदत्त को डायरेक्शन का मौका देंगे। देवानंद ने गुरुदत्त की फिल्म आर पार के सेट पर जब राज खोसला के काम करने का स्टाइल और उनकी फुर्ती, उनका विजन देखा, तो देवानंद राज खोसला के दीवाने हो गए। जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाने की घोषणा की तो उन्होंने गुरुदत्त से कहा कि गुरु, अब मुझे तू नहीं, तेरा असिस्टेंट चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये असिस्टेंट बनकर ना रह जाए, मैं इसे डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो नवकेतन फिल्म्स बैनर की जो पहली फिल्म है उसे ये ही डायरेक्ट करे। और इस तरह से देवानंद ने राज खोसला को मौका दिया। फिल्म का नाम था CID और ये फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर, और इसे फिल्म ने देवानंद को भी और राज खोसला को भी रातों रात स्टार बना दिया। तभी तो देखिए राज खोसला की बहुत सारी फिल्मों में देवानंद है। चलिए अब एक और गीत सुनवाती हूँ, इसमें देवानंद नहीं है, इसमें उनके उन्होंने धर्मेंद्र को लिया है। सुनवाती हूँ आपसे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा का नया पॉडकास्ट आ गया है और इसका नाम है, टाइटल है मेनोपॉज, जिसे होस्ट किया है रूबी रजा ने। और ये पॉडकास्ट हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पर, अमेजन पर, एप्पल एंड जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सब पर लाइका पॉडकास्ट अवेलेबल है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। ये है लाइका रेडियो। Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
1: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
1: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
1: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
3: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
4: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डू, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
2: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
4: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
5: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
6: जगदात्री,
5: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
6: माला ले आना. लाइया जी.
5: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
7: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन.
5: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
8: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why do I need to check my...
9: Hey boy!
10: Coast Guard, we're stuck.
11: Okay, help's on its way.
10: Hold on, mate.
12: Shoes tied. Phone.
13: Back before dark, love. Okay.
14: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
15: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. The Ritu Sharma Show. Featuring classics non-stop with Ritu Sharma on Leica Radio.

0: Disha Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
2: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
1: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
3: Lester Mella is back with exclusive radio partner Leica Radio, August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
4: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it. You just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast. Make the call. Dial 999.
5: जी टीवी HD पर देखिए एक नई कहानी।
6: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
5: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
6: दिल तो टूट पे गया,
5: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
7: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
5: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
9: LemFi means quicker and safe way to send money.
10: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
9: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
10: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
11: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
12: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7 and with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: यस राधा पौडवाल की आवाज में था ये गाना और वही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और आप में से कुछ साथी चाहते हैं कि थ्री वर्ड्स गेम को फिर से रिपीट किया जाए, थ्री वर्ड्स को, तो आज के तीन वर्ड्स हैं रात, याद, दिन। रफी साहब की आवाज, 1965 की फिल्म और एसडी बर्मन का म्यूजिक। कौन सा है ये गाना? आप जब तक सोचिए तब तक मैं शुरू करती हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला और सुनवाती हूँ आपको पहला गाना।
1: ये है Leica Radio Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस, आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना लता जी के आवाज में फिल्म थी अनाड़ी 1959 की फिल्म। और बहुत सारे साथियों ने आज के थ्री वर्ड्स गेम के सही जवाब दे दिए हैं।
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: The Ritu Sharma Show on Laika Radio. Laika Radio.

0: तो जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं बताऊंगी इस गाने के बाद, यानी कि आज के दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक गाने के बाद।
1: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: जी हाँ, आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का ये दूसरा गाना फिल्म बसंत बहार से लिया था और अब समय है नाम लेने का जिन्होंने सही सही गाने को पहचाना है। तो आज का जो सबसे पहला सही जवाब दिया है वो है कुकी। आपका आंसर करेक्ट है करसन पिंडोरिया जी, तोची जी, दिव्या जी हैरो से, हाजरा जी, उल्लास शरफून, नरेन पटेल, नीलेश तन्ना, मितुल पटेल, मनीषा शाह, दामिनी बहन, रानी सुहानी, ऋतु बाली, तोशी जी, श्रेया किंग्सबरी से, अमर अयूब चौहान, विद्युत एंड सहर। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। तो अब जब जवाब सही है तो देर किस बात की, गाना बजा दे ऋतु। तो चलिए सुनवाती हूँ आज के सवाल वाला गाना आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले जल्दी से बता दूं कि अगर हॉलीडे प्लान कर रहे हैं तो साउथहॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर या फिर विजिट कीजिए साउथहॉल ट्रैवल।
1: हॉलीडे ब्रेक

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: आतिफ असलम लाइव इन द यूके.
3: O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
4: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan. Yeh hai Leica Gold 2.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
3: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
4: Abhira, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ?
5: जहाँ तुम बन
4: ये फैसला मेरा था. भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
5: अगर हम साथ हैं
4: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
6: खुशियों को लगी वक्त की नजर. कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
7: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV. प्रेजेंटेड बाय TravelUp.com, पावर्ड बाय नैटको फूड्स.
8: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758-580-1. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
9: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
10: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
11: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
10: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
12: 90s throwback plays now. Like

0: देने दीवार।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: आतिफ असलम लाइव इन द यूके।
4: वो लम्हे वो बातें।
5: Studio 2 London on Sunday the 14th of June.
3: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
6: Leica Radio Network. Proud hospitality partner Ragasan.
7: If you see somebody showing any of the signs of a stroke, you don't have to think about it, you just dial 999. Use the FAST test. F, face. Has their face fallen on one side? Can they smile? A, arms. Can they raise both arms and keep them there? S, speech. Is their speech slurred? T, time. Time to call 999 if you see any one of these signs. Act fast, make the call.
8: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
9: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
8: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
9: दिल तो टूट पे किया,
8: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
10: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
8: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी।

0: लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa प्ले लाइका रेडियो पंजाबी।
1: पंजाबी
2: माँ को बोल की जल्दी मच्छी लेकर आए।
3: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
4: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
2: अरे कहाँ हो तुम?
5: हो आलो
4: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
6: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. The Leica Radio Network Chart Show with Niraj.
8: Leica Radio.
7: Number 9.

0: के एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: अबीरा, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था, भुगत तुम रही हो। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
2: अगर हम साथ हैं
1: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे।
3: खुशियों को लगी वक्त की नजर, कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
4: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस, अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, ई 392 TV, प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नैफको फूड्स।
5: दिस इज लाइका रेडियो, पार्ट ऑफ द लाइका रेडियो नेटवर्क। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग अक्रॉस द UK. This is the Leica Chart Show with Niraj. Number 3. New entry.
6: Played this on Raj's Drive Time, sitting in for him on Monday. First new look at this brand new song. Coming in number 3 this week, this is Tujhko from Cocktail 2.

0: Disha Rice Tasting on Friday, 29th of May at Opus Foods, 1062 to 1066 Warwick Road, Birmingham, B27 6BH.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
2: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
1: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डूज गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
8: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
9: Leica Radio.
10: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
11: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
12: खुद से भी ज्यादा।
10: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
12: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
10: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
13: You're both on the same road, same tarmac, same rules, just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
8: Next, Sonia with the Desi Vibe Show on Leica Radio. Number two.
14: So here we go. The final Leica Radio Network Chart Show, top 25 in at number two this week. On our chart, silver medal goes to Jan the Meridil Fahim Abdullah, which means that Jabtalak, after bubbling under for such a long time, is our brand new number one from Cocktail 2. But we'll get to that straight after this. Chal Meridil, title track.

0: जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो.
3: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरू से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है extraordinary.
2: Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: After Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Laika Radio.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
2: 0208574 8410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
6: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Laika Radio Midlands.
5: For sponsorship inquiries, call Laika Radio on 0116 471 0697.
6: Or sales at laikamedia.co.uk.
7: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
8: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
9: जगदात्री,
8: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
9: माला ले आना। लाया जी।
8: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
10: टीम, get ready for the action।
8: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
11: पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ।
1: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0116-471-0697 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
3: Easing you through the night with the Midlands biggest Asian hits on Laika Radio.